0: इंग्लिश आदमी जिन्हें चियरो के नाम से भी जाना जाता था, ये दावा करते थे कि ये इंडिया में ब्राह्मण्स के उस सेक्ट से कला सीख कर आए हैं जिनके पूर्वजों ने सामुद्रिक का वो साइंस डेवलप किया था। 21 जुलाई साल 1894 वार्नर ने लॉर्ड किचनर का हाथ पढ़ा, वो इंसान जो बाद में जाकर ब्रिटिश आर्मी के सबसे पावरफुल आदमी बनते हैं, और इनका हाथ पढ़कर इन्होंने कहा
1: कि आप भाई साहब तो 66 साल की उम्र तक जियो और आपकी मौत 1916 में होगी पानी की वजह से।
0: अब इत्तेफाक की बात देखो कि ठीक ऐसा ही हुआ दोस्त। 5 जून 1916 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच किचनर का जहाज स्कॉटलैंड के पास एक जर्मन माइन से टकराया और डूब गया। 700 से ज्यादा लोग मारे गए जिनमें से एक किचनर भी थे। इसी तरह वार्नर ने उस वक्त के फेमस राइटर ऑस्कर वाइल्ड का हाथ देखकर कहा,
1: आपको 41 या 42 साल की उम्र में एग्जाइल किया जाएगा।
0: और इत्तेफाक की बात देखिए कि मई 1895 में ऑस्कर वाइल्ड को एक मामले में 2 साल की हार्ड लेबर की सजा सुनाई जाती है और उस वक्त उनकी उम्र थी 41 इयर्स। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा उदाहरण है। साइंस ऐसे किस्सों में नहीं मानता, साइंस को हार्ड एविडेंस चाहिए होता है। और ये एविडेंस ढूंढने की कोशिश हुई थी साल 1990 में। इस साल इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने एक रिसर्च स्टडी के जरिए लाइफ लाइन और लोगों की एक्चुअल एज के बीच रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करी। ऐसा करने के लिए इन्होंने 100 मुर्दा लोगों की दोनों हथेलियों की लाइफ लाइन की लेंथ मापी और हॉटस्पॉट में दर्ज वो की एक्चुअल उम्र से कम्पेयर किया। और जानते हो इस स्टडी का रिजल्ट क्या आया कि राइट हैंड की लाइफ लाइन और मौत की उम्र के बीच इन्होंने देखा कि 0.55 का कोरिलेशन है, यानी स्टैटिस्टिकली दोनों में मजबूत संबंध दिखा। इन डॉक्टर्स ने लाइफलाइन की लेंथ से किसी की भी उम्र निकालने का एक फॉर्मूला तक बना दिया जो कुछ ऐसा दिखता है, एज ऑफ डेथ इक्वल्स टू 105 मल्टीप्लाइड बाय द राइट हैंड्स करेक्टेड लाइफलाइन रेशियो माइनस 27। करेक्टेड लाइफलाइन रेशियो मतलब हथेली छोटी है या बड़ी, इस फैक्टर को रिमूव करके हथेली का जो साइज है उसके रेशियो में आपके हाथ पे जो लाइन है ये लाइफ लाइन है इसकी लेंथ कितनी है। अब जब ये स्टडी पब्लिश हुई तो दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनल्स पर हेडलाइंस चलने लगी, एक नई स्टडी ने साबित कर दिया है कि आपकी हथेली की लाइफलाइन सच में बताती है कि आप कितनी उम्र जियोगे। लेकिन इन सारी खबरों के बीच उस रिसर्च पेपर में एक लाइन भी लिखी थी जो इन सारे अखबारों ने और टीवी चैनलों ने नहीं दिखाई, एक ऐसी लाइन जो पूरी स्टडी का कंक्लूजन ही उल्टा कर देती थी। इसमें लिखा था कि उम्र बढ़ने के साथ झुर्रिया आती है, रिंकल्स आते हैं लोगों, और चेहरे पर तो रिंकल्स आते ही हैं लेकिन हाथों में भी जो रिंकल्स हैं वो बढ़ते हैं, यानी हाथों की जो लाइनें हैं वो भी बढ़ती है, वो भी उम्र के साथ लंबी हो सकती है। तो उन्होंने लिखा कि जो लोग ज्यादा जिए हैं हो सकता है कि उनकी हथेली की लाइन्स भी ज्यादा लंबी इसलिए हो क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी, यानी लाइन ने जिंदगी नहीं बनाई, जिंदगी ने लाइन बनाई। और शायद फ्यूचर के लिए भी यही बात सच हो कि वो कहीं पहले से लिखा हुआ नहीं है, वो रोज लिखा जा रहा है, आपकी छोटी छोटी आदतों से लिखा जा रहा है। पैसे के मामले में तो ये बात सबसे ज्यादा सच है, अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि जो कमाते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा हर दिन बचाओ और उसे कंपाउंड होने दो। जरा सोच कर देखो, अगर रोज के फिजूल खर्चों की जगह सिर्फ 100 या 200 रुपए हर दिन SIP में डालोगे और हर साल 10% से स्टेप अप करोगे तो वही 100 रुपए डेली की बचत 25 साल में 1,30,00,000 रुपए तक बन सकती है। कमाई नहीं बदलनी, बस आदत बदलनी है, और यही आदत आसान बनाते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर बचत ऐप। सिर्फ 100 रुपए रोज से आपका पैसा UPI ऑटो पे से ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है SBI, ICICI और एक्सिस के भरोसेमंद म्यूचुअल फंड्स में, FD से बेहतर रिटर्न्स के साथ। बचत ऐप सेबी रजिस्टर्ड है, सेफ्टी की टेंशन नहीं और कोई लॉक इन भी नहीं, मतलब इमरजेंसी में पैसा इंस्टेंटली निकाला भी जा सकता है। तो देर मत करो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बचत ऐप डाउनलोड करो और आज ही अपनी पहली SIP शुरू करो। और हाँ, ये मत भूलना कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त मार्केट रिस्क होते हैं, इन्वेस्ट करते वक्त रिटर्न्स को तो देखना जरूर लेकिन रिस्क भी समझना। अब अपने टॉपिक पर वापस आए तो अगर हाथ की लकीरें हमारा फ्यूचर नहीं बताती तो पाम रीडर कैसे हाथ देखकर हमारा एक्यूरेटली फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ये समझने के लिए पहले एक केस देखना होगा। अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक टीनेजर रे हाईमैन मैजिक शोज करके पैसे कमाता था, लेकिन फिर उसे लगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो उसने हाथ देखना शुरू कर दी। शुरुआत में उसे पामेस्ट्री पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर कुछ ही सालों में रे हाईमैन सच में पामेस्ट्री का पक्का बिलीवर बन गया क्योंकि उसके क्लाइंट्स बार बार कहते थे कि उसने जो भी बताया वो सब सच निकला। फिर एक दिन एक प्रोफेशनल मेंटलिस्ट ने रे को एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हथेली की जो लाइंस कहती हैं ठीक उसका उल्टा बताओ अपने लोगों, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर करके देखो क्या होता है। तो रे ने अगले कुछ हफ्तों तक ठीक ऐसा ही किया, यानी अगर लाइफ लाइन लंबी उम्र बता रही थी तो उसने कम उम्र बताई, मनी लाइन पैसा बता रही थी तो उसने कहा कि जीवन में स्ट्रगल देखना पड़ेगा। अब हैरान

0: की बात ये निकली कि इन बिल्कुल ऑपोजिट प्रिडिक्शंस के बावजूद रे ने जो पाम रीडिंग्स करी थी वो पहले जितनी ही सक्सेसफुल साबित हुई। पहले की तरह ही लोग आकर उनसे कहते कि आपने जो कहा था सर बिल्कुल सच हो गई वो बात, आपकी प्रिडिक्शन एक बार फिर से सही निकली, वाह सर आप तो एक नंबर के फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हो। और ये सब देखकर रे हाइमैन शॉक रह गया। वो इतना हॉरिफाइड हुआ इस चीज से कि उसके बाद से उसने हाथ पढ़ना ही छोड़ दिया और आज वो साइकोलॉजी के एक रिनाउंड प्रोफेसर है। अब सवाल फिर से वही आता है कि सेम लाइंस को लेकर एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रिडिक्शंस करी और फिर भी वो सही साबित हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है दोस्तों तीन चीजों में, जिनमें से पहली चीज निकली 1948 में एक क्लासरूम में हुए एक्सपेरिमेंट से। साल 1948 में साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर बेटराम फोरर ने अपनी क्लास के 39 स्टूडेंट्स को उनका पर्सनैलिटी एनालिसिस दी और जो एनालिसिस में कहा गया स्टूडेंट्स को, अब वो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों का पर्सनैलिटी एनालिसिस करना चाहूंगा। आप वो इंसान जो इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपकी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट करना चाहूंगा। रेडी हो आप? तो सुनो मेरी पहली प्रिडिक्शन। आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपको पसंद करें, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं। आप कभी कभी खुद की बहुत आलोचना करते हो, बहुत ज्यादा क्रिटिकली देखते हो अपने आप को कई बार। दूसरी प्रिडिक्शन, आप कभी कभी काफी इंट्रोवर्टेड फील करते हो कि अकेले में रहने का मूड कर रहा है आज, मुझे किसी से नहीं मिलना, लेकिन कभी कभी आप बिल्कुल एक्स्ट्रोवर्टेड बन जाते हो, लोगों के साथ घुलना मिलना आपको पसंद है, काफी सोशलेबल आप हो, बाहर से आप काफी कंट्रोल से दिखते हो लेकिन अंदर से कभी कभी बड़े इनसिक्योर फील करते हो। तीसरी प्रिडिक्शन, आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट थिंकर के तौर पर देखते हो, जो दूसरों की बातों में एवं यकीन नहीं कर लेता। आप दूसरों की बात में तभी विश्वास करते हो जब उसका सफिशिएंट प्रूफ दिया जाए। है कि नहीं ये आपकी पर्सनालिटी? बताओ जरा मुझे, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ।
1: चीटिंग करता है तू।
0: साल 1948 में प्रोफेसर बेटराम फोरर ने भी अपने स्टूडेंट्स को यही प्रिडिक्शंस दी थी कि उनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है। असल में ये सारी बातें एक एस्ट्रोलॉजी की किताब से उठाई गई थी। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको भी बताई, ये बड़ी वेग स्टेटमेंट्स थी।
2: There is a break in your lifeline. This is your lifeline right here. So you've had some physical problems. You still may have some problems here, some medical problems of some sort.
3: He was right about that. That I had had some health problems.
0: यानी सुनने में ऐसा लगता है कि ये बड़ी स्पेसिफिकली सिर्फ आपके लिए कही गई, लेकिन एक्चुअली में ये बड़ी ब्रॉड स्टेटमेंट्स हैं और ज्यादातर लोग अपने आप को खुद इन स्टेटमेंट्स में देखते हैं। और यही चीज प्रोफेसर के स्टूडेंट्स के साथ हुई। स्टूडेंट्स ने ऑन एवरेज 5 में से 4.26 की रेटिंग दी, यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स का कहना था कि ये एनालिसिस लगभग परफेक्ट है और एग्जैक्टली उन्हीं की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करती है। सेम बातें 39 अलग अलग स्टूडेंट्स को लग रही थी कि वो उनके लिए कही गई हों। साल 1956 में साइकोलॉजिस्ट पॉल मीहल ने इस फिनोमेना को एक नाम दिया, बार्नम इफेक्ट। बार्नम इफेक्ट का मतलब बड़ा सिंपल है, ये वो वेग और जनरलाइज सी बातें हैं जो किसी भी इंसान या कंडीशन के बारे में सच हो सकती हैं, लेकिन लोग अक्सर इन्हें अपनी यूनिक पर्सनालिटी या कंडीशंस का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन मान लेते हैं। ये सारे पाम रीडर्स और फॉर्च्यून टेलर्स एग्जैक्टली यही करते हैं, बड़ी जनरलाइज सी बातें बोलते हैं जो लोगों को लगता है कि उनके लिए बड़ी सच है। उदाहरण के तौर पर ये आपको कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अब हर किसी की जिंदगी में हर दिन चेंजेस तो होते ही रहते हैं। अगर आप स्कूल में हो तो हो सकता है आपका स्कूल खत्म होने वाला हो, बड़ा बदलाव। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कुछ सालों बाद आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा, बड़ा बदलाव। या फिर हो सकता है अगर आप जॉब में काम कर रहे हो तो जॉब बदलने वाली हो, एक और बड़ा बदलाव। और अगर ये सब भी ना हो तो घर में कुछ ना कुछ तो बदलता ही रहता है, शादी होना, बच्चे होना या रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आना, आप किसी भी चीज को बड़े बदलाव के तौर पर देख सकते हो। और ये बात हर किसी के लिए हर समय सच रहेगी। किसी कारण से एक पाम रीडर को सही होने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग खुद ही प्रिडिक्शन को सही बना देता है। और ऐसी वेक स्टेटमेंट्स तो सिर्फ शुरुआत है, एक अच्छा पाम रीडर तो और भी ज्यादा स्पेसिफिक चीजें बता सकता है और उसके लिए वो इस्तेमाल करता है कोल्ड रीडिंग का। कोल्ड रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है में भविष्य बताने वाला क्लाइंट के बैकग्राउंड और प्रॉब्लम्स के बारे में कैलकुलेटेड गेसेस करता है, फिर जो बंदे का रिएक्शन आता है उसके हिसाब से आगे की चीजें बोलता है और सुनने वाले को लगता है कि वो सच में उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है। रे हाइमैन ने अपने 1977 के एक ऐसे ही रिसर्च पेपर में कोल्ड रीडिंग करने की कुछ टेक्निक्स बताई थी। इसमें पहली चीज आती है पाम रीडर का खुद का बिहेवियर। जो बंदा यहाँ पर भविष्य प्रेडिक्ट कर रहा है उसका खुद का कॉन्फिडेंट दिखना बहुत जरूरी है और उसे चीजों को ड्रामेटाइज करना चाहिए, एक ड्रामेटिक तरीके से धीरे धीरे बोलकर मूवी स्टाइल में चीजें बताई जाए।
4: प्रश्नों से अधिक शंका है आपके मन में।
0: जितना वो ड्रामेटिक तरीके से बात करेगा, जितना वो कॉन्फिडेंट तरीके से बात करेगा, इम्प्रेशन ये जाएगा कि वो जितना कुछ बता रहा है उससे ज्यादा पता है। दूसरी चीज होती है अच्छे से ऑब्जर्व करना, सामने वाला जो बंदा बैठा है उसके कपड़े कैसे हैं, कौन सी ज्वेलरी उसने पहनी है, उसका बोलचाल का तरीका क्या है। सिर्फ यही

0: चीजें ढंग से ऑब्जर्व कर लोगे तो आप बहुत कुछ ऐसी चीजें बता पाओगे जो एक आम इंसान मिस आउट कर जाता है। एक अच्छा पाम रीडर इसी चीज से एक बेस तैयार करता है। और फिर आती है तीसरी टेक्निक, फिशिंग। फिशिंग यानी वेक स्टेटमेंट्स को एक सवाल की तरह कहना, जिसके बाद आप खुद अपने बारे में कुछ चीजें बताने लगते हो और भविष्य बताने वाला उन्हीं चीजों को रिफ्रेश करके एक कहानी बुन देता है और आप ही को दोबारा बताता है। अक्सर आप बाद में खुद ही भूल जाते हो कि उस इन्फॉर्मेशन को तो आपने ही दिया था। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे कह सकता है कि
1: कोई ना कोई तो है आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, कोई आपके बड़ा करीब है ना?
0: और इसके जवाब में आपका रिएक्शन क्या होगा?
2: हाँ सर, आपको कैसे पता लगा? एक्चुअली में मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है एक बंदे से, वो एक्चुअली में ऑफिस का बंदा है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, उसको वो मेरी जॉब में मेरे को हमेशा तंग करते रहता है। वाह सर, आप तो इतना अच्छे प्रेडिक्ट कर रहे हो अभी से।
1: मैं तुम्हारी लकीर में ये भी देख पा रहा हूँ कि पैसा पैसा शब्द मुझे दिख रहा है
2: अभी से।
1: मैं तुम्हारी लकीर में ये भी देख पा रहा हूँ कि पैसा पैसा शब्द मुझे दिख रहा है। पैसा शब्द आजकल तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा है, क्या ये करेक्ट है या नहीं?
2: बिल्कुल सर, एग्जैक्टली उसी बंदे की वजह से तो ये प्रॉब्लम आ रही है पैसे की, इसी की वजह से मैं टेंशन में हूँ कहीं मैं जॉब ना लूज कर दूँ। क्या आप प्लीज प्रेडिक्ट करके बता सकते हो मैं मेरी जॉब का क्या होगा आगे?
0: ऐसी ही एक और ट्रिक है जिसमें पाम रीडर खुद आपसे पूछता है कि किस लाइन से शुरू करना है, और आप जो लाइन सेलेक्ट करते हो उससे तुरंत पता लग जाता है कि आपके दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस कैटेगरी की है। अगर आपने बोला कि मनी लाइन से शुरू करते हैं तो उसे पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ में पैसे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। इसी के साथ ही वो बीच बीच में आपकी तारीफ भी करता रहता है, बस उसमें कुछ नेगेटिव बातें ऐड कर देता है ताकि सब ऑथेंटिक लगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना आप बैक एंड फोर्थ बात करते रहोगे उस पाम रीडर से, उतना ही उसको आपके बारे में पता लगेगा। आपके रिएक्शंस देखने को मिलेंगे अलग अलग चीजों के बारे में, और वो जो अपने गेसेस कर रहा है, कैलकुलेटेड गेसेस कर रहा है, वो उतने ही एक्यूरेट होते चले जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें सामने आया कि सबसे असरदार रीडिंग वो होती है जिसमें क्लाइंट को लेकर लगभग 75% पॉजिटिव और 25% नेगेटिव बातें हो, और ये नेगेटिव बातें ही इनफैक्ट रीडिंग को सक्सेसफुल बनाती है। इसी कारण हर पाम रीडर आपको एक दो कमियां जरूर बताता है। फिर आता है सबसे बड़ा गोल्डन रूल, पाम रीडर वही बताता है जो आप सुनना चाहते हो। आपकी टेंशन, आपकी प्रॉब्लम्स और इन सबको समझ कर वो मोर और लेस वही चीजें बताएगा जिनको देखकर आप संतुष्ट फील करो, ताकि आप उसके बाद वापस आना चाहो। यही सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके दोस्तों कोई भी पाम रीडर, कोई भी भविष्यवाणी करने वाला आपको भरोसा दिला सकता है कि वो हथेलियों की लाइन से आपका फ्यूचर पढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और यहाँ पर कंफर्मेशन बायस भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, यानी हर चीज को इस तरीके से इंटरप्रेट करना कि जो हमारा पहले से ओपिनियन है हम सिर्फ उसी से सहमत होने वाली बात को चुने, उसे रीइंफोर्स करने वाली बातों को सुने और उसके खिलाफ जाने वाली चीजों को हम इग्नोर कर दें। एक फॉर्च्यून टेलर बहुत सारी प्रेडिक्शंस करता है। अब जो प्रेडिक्शंस सही साबित हो जाती हैं वो तो हमें याद रहती है, लेकिन जो नहीं होती हम उन्हें भूल जाते हैं और सालों बाद हमें लगता है कि अरे यार, उस व्यक्ति ने तो सच में ये प्रिडिक्ट किया था और अब ये चीज हो गई है, यानी वो तो सही है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में उठेगा कि अगर ये सब कुछ सिर्फ कोल्ड रीडिंग जैसी ट्रिक से ही हो रहा है तो वो जो वार्नर बंदा था उसने 2 लोगों की मौत का साल एग्जैक्टली कैसे प्रिडिक्ट कर दिया था? ऐसा करना तो सिर्फ कोल्ड रीडिंग या बार्नम इफेक्ट या किसी भी छोटी मोटी ट्रिक से पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बात सच है दोस्त, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे असल में एक और कारण था। कारण ये है कि वार्नर भाई साहब ने ये दोनों कहानियां खुद बताई थी, और वो भी एक्चुअल इवेंट्स के सालों बाद। ऑस्कर वाइल्ड वाली कहानी 1912 में छपी किताब में बताई गई थी, जबकि उनका अरेस्ट 1895 में हुआ था। 17 सालों बाद वो कहानी बताई गई, और किचनर वाली कहानी 1932 में बताई गई, किचनर की मौत के 16 साल बाद। यानी कि हम सिर्फ इस बंदे की बातों पर यकीन कर रहे थे कि इसने कहा कि प्रिडिक्शन करी थी इसने, लेकिन हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है।
3: अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
0: और जब एक्चुअली में वार्नर ने सच में फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी, तब जानते हो क्या हुआ? 1931 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि अगले 50 सालों में न्यूयॉर्क का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक में जमीन की एक नई पट्टी उभरेगी और नॉर्दर्न यूरोप में ग्लेशियल एज लौट आएगी, जिससे ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश रहने लायक नहीं रहेंगे। इन प्रिडिक्शंस को किए गए लगभग 100 साल हो चुके हैं, लेकिन इनमें से एक भी चीज सच नहीं हुई। न्यूयॉर्क अभी भी वहीं का वहीं है और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में लोग अभी भी रहते हैं।
4: वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
0: अब कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि हाथों की लाइंस एक्चुअली में पूरी तरीके से बकवास नहीं है? इनसे कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली में बताई जा सकती।

0: इसके लिए थोड़ा बायोलॉजी में जाना होगा. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारे हाथों के मुड़ने से ये लाइंस आती हैं, क्योंकि जहां पर आप एग्जैक्टली मोड़ रहे हो हाथ, वहीं पर ये लाइंस बननी शुरू होती हैं. लेकिन सच बात ये है कि ये लाइंस तभी बन जाती हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, प्रेगनेंसी के 8th से 13th वीक में. और एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन लाइंस का काम होता है हाथ की स्किन को स्ट्रेच और स्क्वीज करने में मदद करना, ताकि मुट्ठी अच्छे से बंद हो सके. अगर ये लाइंस नहीं होती तो स्किन एक गुच्छा बनाकर हाथ के बीच में इकट्ठी हो जाती और किसी भी चीज को पकड़ना मुश्किल हो जाता. अब ये लाइंस भले ही हमारा फ्यूचर ना बताती हो, लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ ये सच में कुछ बताती है. ज्यादातर लोगों की हथेली पर ये 3 बड़ी लाइनें होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में सिर्फ एक ही लाइन होती है. अगर कोई बच्चा सिर्फ एक लाइन के साथ पैदा होता है तो ये डाउन सिंड्रोम होने का इंडिकेशन हो सकता है. एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान में क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, जो उसके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है. और इसी तरह कुछ और जेनेटिक डिजीजेस भी हैं जो हथेलियों की लाइनों से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं. लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी एक सिंगल लाइन सिर्फ इंडिकेशन दे सकती है, कोई फॉर श्योर नहीं बता सकती कि बच्चे को सही में ये जेनेटिक डिजीज है या नहीं. इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है और डॉक्टर्स इसे नोट करते हैं ताकि खतरे को आइडेंटिफाई किया जा सके. तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस थोड़ी बहुत बायोलॉजी के अलावा पामिस्ट्री पूरी तरीके से एक फ्रॉड चीज है. रे हाइमन ने हथेली की लकीरों को लेकर ऑपोजिट प्रिडिक्शंस की और दोनों बार वो सही निकले. इसलिए नहीं क्योंकि वो लकीरें झूठ बोल रही थी, बल्कि इसलिए कि लकीरें कभी बोल ही नहीं रही थी. एक पाम रीडर आपके बारे में एक्यूरेट चीजें इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि वो आपका हाथ पढ़ रहा होता है, बल्कि वो इसलिए बता पाता है क्योंकि वो आपको पढ़ रहा होता है और आप उसे खुद लीड कर रहे होते हो. और फिर आता है हमारा दिमाग. जो प्रिडिक्शन सही साबित होती है उन्हें हम याद रखते हैं और जो नहीं होती उन्हें भूल जाते हैं. और इसी कॉकटेल से ये बिलीफ पैदा होती है कि सच में हाथ की लकीरें पढ़कर फ्यूचर पता किया जा सकता है. इन लाइनों को लेकर फिंगरप्रिंटिंग के फादर फ्रांसिस गैल्टन ने कहा था, दीज लाइन्स आर नो मोर सिग्निफिकेंट देन द क्रीजेस इन ओल्ड क्लोथ्स. इन हाथों की लकीरों के उतने ही मायने हैं जितने आपके कपड़ों में पड़ रही सिलवटों के हैं. और वो 1990 वाली रिसर्च याद है जहां पर लाइफ लाइन का फॉर्मूला तक बना दिया गया था. उस स्टडी के लीड ऑथर डॉक्टर पीजी न्यूरिक ने कहा था कि स्टडी के पहले वो पामिस्ट्री में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन स्टडी के बाद भी वो इसमें विश्वास नहीं करते हैं. याद रखना, आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हो, आप अपनी तकदीर खुद लिखते हो. कोई आपको नहीं बता सकता कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, क्योंकि ये आप पर निर्भर है. आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपका फ्यूचर क्या हो, आप खुद अपना भविष्य तय करते हो.
1: अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो. कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक. वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक.
2: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते. कॉल करो 5873606890.
1: थोड़े परिवार की सेहत साड़ी जिम्मेदारी.
3: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब.

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा। लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सब्रम।

0: ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ 80s ਦੀ ਮੂਵੀ ਵਿਦਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਡੇ 1 to 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ iwebguide.ca ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguide.ca।
2: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
3: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
2: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
3: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
2: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
3: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
2: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
3: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
4: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
5: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIE applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat he immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde han. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
6: Regulated Canadian Immigration Consultant.
5: 403-225-1111.
4: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
7: The time is 2 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ
1: में भारत के कई हिस्सों में स्कूल के कई स्टूडेंट्स ने जरूरी सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किए। भारत से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस में भी स्टूडेंट्स स्कूल और यूनिवर्सिटी की बदहाल स्थिति को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला इतना बड़ा कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर और स्टूडेंट्स के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होनी है। प्रदर्शन को देखते हुए फ्रांस में 400 से ज्यादा स्कूल और करीब 40 यूनिवर्सिटीज बंद हैं। गुरुवार को स्टूडेंट ने रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। इस दौरान पुलिस ने करीब 2000 लोगों को गिरफ्तार किया। स्टूडेंट्स की शिकायत है कि क्लास में जरूरत से ज्यादा लोग हैं, फैसिलिटी की हालत खराब है, कम से कम 2 स्कूल में आग भी लगा दी गई है। देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस की ये रिपोर्ट।
2: इतने बड़े स्तर पर हो रहे प्रदर्शन में हालात आसानी से बिगड़ सकते हैं, जैसा कि मार्सेई में देखने को मिला। ऐसे प्रदर्शनों में कुछ लोग हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहां उन्होंने दमकल की गाड़ी को निशाना बनाया और पश्चिमी शहर नांत में एक हाई स्कूल को निशाना बनाया गया। कुछ जगहों पर पुलिस पर जरूरत से ज्यादा सख्ती करने का आरोप लगा है। ज्यादातर टीनेजर समेत हजारों लोग 300 से ज्यादा जगहों पर रैलियों में शामिल हुए। उनके मुख्य मुद्दों में स्कूल और क्लासरूम बदहाल होना, स्टाफ की कमी, जरूरी सामान की कमी और दूसरी कई समस्याएं हैं। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपनी परेशानियां ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, जिससे बदलाव की उनकी मांग और तेज हो गई है। प्रदर्शनों की शुरुआत एक हफ्ते पहले पेरिस के पास के इल दे फ्रांस इलाके में हुए प्रदर्शन से हुई थी। अभी हालात शांत होते नहीं दिख रहे हैं।
3: हम आज इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सबर्ब्स में सरकार जरूरत जितना पैसा नहीं लगा रही है। बिल्डिंग जर्जर हो रही है, ना नर्स है ना टीचर।
2: आपका स्कूल कैसा है?
4: स्कूल सेंट डेनिस में है।
2: कुछ प्रदर्शनकारियों ने ये किया। धुर वामपंथी पार्टी LFI की स्कूलों को ब्लॉक कराने वाले प्रदर्शन का समर्थन करने को लेकर आलोचना हुई। जब लोकल मेयर पहुंचे तो उनका अच्छे से स्वागत किया गया। क्या आप इस प्रदर्शन को भड़का रहे हैं? उन्होंने हमसे कहा कि जो लोग कहते हैं कि मैं इसे राजनीतिक रंग दे रहा हूं, उनको मैं बस इतना कहता हूं कि ऐसी बेकार की बातें करने की बजाय ये सोचिए कि ये बच्चे हैं। उनकी बातों का यहाँ असर होता दिख रहा है। देश के PM ने कहा कि प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, लेकिन स्कूलों को इस तरह ब्लॉक करना और टकराव की स्थिति पैदा करना गैर जिम्मेदाराना है। मंत्रियों ने इमरजेंसी मीटिंग की और अपने सभी आधिकारिक दौरे रद्द कर दिए हैं। माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन कुछ वक्त तक जारी रहेंगे। BBC संवाददाता जेम्स वाटरहाउस की रिपोर्ट।
0: ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ।

0: राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन चुनाव आयोग और उसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन जारी रहे। दिल्ली पुलिस और CISF यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बल भारी तादाद में दिल्ली की सड़कों पर रहे और उतनी ही सख्ती के साथ प्रदर्शनकारियों और एक्टिविस्ट को डिटेन करते रहे। दिन की शुरुआत उन्हीं के खिलाफ एक प्रदर्शन से हुई। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर भारी बैरिकेडिंग है, बहुत सारी पुलिस की तैनाती और बहुत सारे पत्रकार हैं जो यहां पर 3 तारीख को नेहा बोरा और आयशा के बुलाए गए मार्च के दौरान 2 महिला पत्रकारों और 1 महिला प्रदर्शनकारी के मोलेस्टेशन और असॉल्ट की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा इस तरह के बर्ताव की कंप्लेंट के बारे में कवरेज के लिए यहां मौजूद हैं कि जो कंप्लेंट है, जो दिल्ली पुलिस का कहना है, उन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भेजी है, वो FIR में तब्दील हो। यहां पे जो लोग जुटे हैं उसे बहुत सारी महिलाएं भी हैं जिनमें काफी गुस्सा है जिस तरह का बर्ताव उन्हें दिल्ली पुलिस के हाथ मिला।
1: मुझे बताओ, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, पुलिस स्टेशन है ना, यहाँ पे हर कोई जा सकता है ना, क्रिमिनल भी जा सकता है, आप भी, मैं भी, कोई भी जा सकता है। ये बैरिकेड्स देखिए, ये इंडिया है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उन्होंने पूरी छावनी बना के रखी है। बिल्कुल ऐसा नजारा लग रहा है जैसे हम उस 1947 वाली जो छावनियां बनती थी ना, यहाँ पे मारदार के लिए जो अंग्रेजों की छावनियां बनती थी, डिटेन कैंप्स बनते थे, ये बिल्कुल डिटेन कैंप नजर आ रहा है।
0: पुलिस ने कहा है कि उन्होंने कंप्लेंट लेके क्राइम ब्रांच को भेज दिया, उससे आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है, भरोसा आता है कि वो इस पे कार्रवाई करेंगे?
2: ये सिर्फ एक मतलब दिलासा देने है अपने आप को कि हाँ एप्लीकेशन होगी, हम अपने आप को दिलासा दे सकते हैं, बस इतना है, कार्रवाई कुछ नहीं होगी।
3: लॉ बहुत अच्छे से ये कहता है कि अगर एक औरत महिला पुलिस स्टेशन में आ रही है रेप के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, मोलेस्टेशन के लिए केस रजिस्टर करने, तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो कंप्लेंट ले और फिर FIR तुरंत लॉन्च करे बिना इंक्वायरी करे। तो ये लॉ इनके लिए चेंज क्यों हो रहा है?
4: हमें लोगों ने संघर्ष करके कानून बदला, लेकिन आज सेक्सुअल हैरेसमेंट का अगर ये हालत बनाते हैं और अपनी ACP को बचाने के लिए कानून का धज्जा उड़ाते हैं, ये हर औरत का, हर वुमन जर्नलिस्ट का सवाल है।
0: उसके बाद आयशा की तरफ से नेहा बोरा की अध्यक्षता में एक मार्च का आह्वान हुआ जो इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर तक लाया गया। इसमें कई सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। एक मार्च का कॉल यूथ कांग्रेस ने भी किया, वहीं इंडिया गेट से लेकर जंतर मंतर तक। नेहा बोरा और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को भी डिटेन किया गया। हम संसद मार्ग थाने के बाहर एक्टिविस्ट महविश से मिले थे, जिसके बाद वो इंडिया गेट से जंतर मंतर प्रोटेस्ट मार्च पर आई और अभी वो हमें फिर से मिली है। उनके पास ये चोटें लगी हुई हैं।
1: बस से गिरा दिया, बस में चढ़ाया, रोज डिटेन करते हैं, रोज दिन में 3 बार 4 बार डिटेन करते हैं, आज एक बार ही डिटेन करा, मैं हाथ नहीं आ रही थी, मैंने बहुत संघर्ष करा बचने का, बच नहीं पाई, कपड़े वपड़े फाड़ के बस में बिठा दिया मुझे, उसके बाद शीशा तोड़ा, किसी ने धक्का दिया, वहां से नीचे फेंक दिया। बस
5: पीछे से मेल कॉप आता है, मेरे को ऐसे पकड़ता है, वो भी यहाँ से दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, आई डोंट थिंक ये जायज है ऐसे करना, मेरे को इससे खींचता है, मैं कहता हूँ ऐसे कैसे खींच रहा है तू, वो कहा तेरी, मैंने ऊपर बोला उसके, फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ऐसे खींच के ले गए वहां तक गए, क्योंकि ना मेरे पास पानी है, खाना मैं सुबह से एक बर्गर खाया मैंने और कुछ ताकत नहीं मेरे पास।
0: जंतर मंतर पर अलग अलग वेव्स में प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं और यहां लोगों की तादाद न कम हो रही है, न पुलिस वालों की तादाद कम हो रही है, बहुत सारी बसेस अभी भी तैनात हैं और लोगों को यहां से खाली करने की और उन बसेस में भरकर डिटेन करने की कोशिश अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन आर्यन के साथ दिव्या आर्य, BBC दिल्ली।

0: अभी भी फोन नहीं उठाने दे रहा है मैं किसी के साथ भी। इतना अत्याचार दिल्ली पुलिस करती है, मैं कब से चिल्ला रही हूँ मेरा फोन गिर गया, फोन भी नहीं उठाने दे रहे हैं और मैं घर से किसी के साथ भी नहीं हूँ, मेरा कैसे कॉन्टेक्ट करूंगी। इतनी दिल्ली पुलिस की बर्बरता हो रही है, कैसे नोच नोच के कपड़े फाड़ फाड़ के तुम लोगों को डिटेन कर रहे हैं।
1: AISF से दो लोग अंदर डिटेन है, उनको पुलिस ने पकड़ा है बेहद बहुत ही बुरी तरीके से, उनको पिटा है। हमारा साथ इसका नाम आदित्य है और हमारे जो AISF के जनरल सेक्रेटरी है दिनेश, उनको अंदर किडनैप करके रखा है दिल्ली पुलिस ने।
2: हम लोग कांच से निकलने वाले थे, बाहर से किसी ने कांच तोड़ा है, हम लोग और तोड़ के निकलने वाले थे, फिर लेडीज लोग आई, बाप 15-20 होंगे अभी तो।
0: अब जो मेल पुलिस कांस्टेबल है वो लड़कियों का ब्रेस्ट दबा के खींच रहे हैं, उन्होंने नई प्रैक्टिस निकाली है, कपड़े फाड़ दिए गए मेरे कपड़े खींच रहे हैं।
3: 2023 में जो काला कानून लाया गया था जो मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए, वो जब तक रद्द नहीं किया जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहने वाली है।
4: बिना रास्ता खाली कराए जिस तरह से पुलिस लेकर के दौड़ रही है बस को, ये देखिए हट जाओ आगे से, आगे अरे अरे आराम से भाई, क्या कर रहा है यार,
5: किसी को चोट भी लगी है क्या?
3: बिल्कुल, कई साथियों को, कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, लोग बेहोश हो गए हैं। ये भाजपा की दलाल जो दिल्ली पुलिस है, ये अपने आका गणेश कुमार ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए आज छात्रों नौजवानों पर जिस तरीके से बर्बरता कर रही है, हम इस बर्बरता से डरने वाले नहीं है। हम तब तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देता, जब तक SIR को रद्द नहीं किया जाता, जब तक जिन जिन राज्यों में SIR के बाद चुनाव हुए हैं उसको रद्द नहीं किया जाता, फॉर्म 6 में बदलाव को हटाया नहीं जाता और 2023 में जो काला कानून लाया गया था जो मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए, वो जब तक रद्द नहीं किया जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहने वाली है।
5: ये देखिए किस तरह से लोगों को डिटेन किया जा रहा है और यहाँ पे वो देखिए, ये जो बस है डिटेन के लिए लाई गई थी उसका शीशा फोड़ दिया और एकदम लड़की खिड़की पर खड़ी है, किस तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। आपको भी चोट लगी है क्या
6: सर? लगी रही है, शेड फाड़ दी, पैरों में मार दिया, अब खून भी निकाल रहे हैं।
5: चलिए
6: रिलीज करो सबको।
5: देखिए यहाँ पर जो लोग डिटेन हुए हैं उनको रिलीज करने की मांग हो रही है और चूंकि वो जो शीशा फोड़ा गया है वो इसीलिए, चूंकि जो अंदर डिटेन्ड हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस का दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। अब पुलिस तो लगातार ये आश्वासन दे रही है कि बस का दरवाज़ा खोल करके उनको बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी देखिए हम उधर से वापस घूम कर के आए हैं लेकिन अभी कोई दरवाज़ा वगैरह खोला नहीं गया है।
1: हमारे साथ है AISF से दो लोग अंदर डिटेन है, उनको पुलिस ने पकड़ा है बेहद बहुत ही बुरी तरीके से, उनको पिटा है। हमारा साथ इसका नाम आदित्य है और हमारे जो AISF के जनरल सेक्रेटरी है दिनेश, उनको अंदर किडनैप करके रखा है दिल्ली पुलिस ने और पुलिस पीट भी रही है। यही नहीं कि डिटेन करके बैठा दिया जाए, उनको डिटेन किया गया है, कोई आतंकवादी थोड़ी है पुलिस जो उनको मार रही है। आप बताइए, देखिए
2: चोटें लगी है, बहुत धक्का मुक्की हो रही है। हम लोग कांच से निकलने वाले थे, बाहर से किसी ने कांच तोड़ा है, हम लोग और तोड़ के निकलने वाले थे, फिर लेडीज लोग आई, बाप 15-20 होंगे अभी तो।
7: ये देखिए कितनी तरीके मारा गया है, यहाँ नाखून मारा गया, ये तो कांच लगा है, कांच दिखता है, यहाँ नाखून मारा गया, यहाँ मेरे को सीधा चुभाए, मेरे सर फट गए।
5: ये देखिए, मैं फिर वही बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन एक महिला पुलिस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, सारे के सारे
7: पुरुष।

0: मैट संधू पंजाब के सबसे प्रमुख LGBTQ प्लस कंटेंट क्रिएटर में से एक थे और वे अपनी समलैंगिक यानी गे की पहचान को कभी नहीं छुपाते थे। वे अपनी रील्स में बोल्ड स्टाइल और क्रॉस ड्रेसिंग का इस्तेमाल करते थे। इसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार होमोफोबिक ट्रोलिंग, अपमानजनक टिप्पणियों और नफरत का सामना करना पड़ता था। ट्रोलर्स को जवाब देते हुए संधू कहते हैं, भगवान ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा ही हूं। संधू की बोल्डनेस की वजह से उनका ऑनलाइन क्रिटिसिज्म बढ़ता गया। जुलाई 2026 में एक निहंग सिख के साथ मैट संधू की बहस का एक ऑडियो वीडियो क्लिप इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ था। निहंगों ने उनके कंटेंट, क्रॉस ड्रेसिंग और पुरानी रील्स पर सख्त आपत्ति जताई और चेतावनी दी। निहंगों ने कहा, ऐसा कंटेंट पंजाब की संस्कृति, सिख परंपराओं और नई पीढ़ी के लिए गलत संदेश दे रहा है। इसके बाद मैट संधू ने सोशल मीडिया पर क्लेरिफिकेशन जारी किया था कि उन्होंने अपना कंटेंट स्टाइल बदल दिया है और वे अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहरा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके पुराने वीडियो जानबूझकर वायरल करके विवाद खड़ा कर रहे हैं। निहंगों के अलावा मशहूर पंजाबी सिंगर KS मक्खन के साथ भी मैट संधू का विवाद हुआ था। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कपूरथला में हुए एक शो के दौरान जब एक फैन ने KS मक्खन को मोबाइल पर मैट संधू की फोटो दिखाकर गाना गाने को कहा, तो KS मक्खन ने स्टेज से मैट संधू का मजाक उड़ाते हुए उन्हें चिज्जी कह दिया था और कुंवारों की खुराक बता दिया था। हालांकि संधू की हत्या को इन विवादों से जोड़कर देखना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन संधू का ये मर्डर पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर हुए मॉरल पुलिसिंग हमलों की कड़ी में दूसरा सबसे बड़ा जरूर माना जा रहा है। इससे पहले जून 2025 में लुधियाना के मशहूर इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की भटिंडा में हत्या कर दी गई थी। उस मामले में कट्टरपंथी निहंग अमृतपाल सिंह मेहरो ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था, कमल कौर का कंटेंट अश्लील था और उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कौर सरनेम हटाने से इनकार किया था। मेहरो बाद में UAE भाग गया था, जिसे अप्रैल 2026 में दिल्ली एयरपोर्ट पर डिपोर्ट करके गिरफ्तार किया गया और उस पर भटिंडा कोर्ट में मर्डर चार्ज फ्रेम किए गए हैं। खैर, इन मर्डर्स के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि दूसरी ओर से खुलेआम जिम्मेदारी ली जा रही है मर्डर की। जैसे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो की फेसबुक पोस्ट सामने आई, दैनिक भास्कर के अनुसार गोल्डी ढिल्लो ने लिखा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज रंजीत एवेन्यू में मैट संधू की जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं, गोल्डी ढिल्लो और जगपाल तरनतारन लेते हैं। ये लोग हमारी नई पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। बाकी जो भी इनके जैसे लोग सोशल मीडिया और टिकटॉक पर हथियारों का प्रदर्शन करते हैं उन्हें भी चेतावनी है। जो लोग इन्हें प्रमोट कर रहे हैं वे भी अपनी तैयारी रखें। जिन स्कूलों में इन्हें चीफ के तौर पर बुलाया जा रहा है उन्हें भी आखिरी चेतावनी है। जो लोग गुंडागर्दी करना चाहते हैं उन्हें पंजाब से बाहर कर दो। ये योद्धाओं की धरती है और इस धरती पर योद्धा ही रहेंगे। जिन्हें हमारे फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही और जो सुरक्षा लेकर बैठे हैं वे भी तैयार रहें। इंतजार करो और देखो। गोल्डी ढिल्लो के इस दावे के तुरंत बाद स्पेन में काम कर रहे गैंगस्टर लक्की जोहल का एक ऑडियो मैसेज जारी हुआ। दैनिक भास्कर के मुताबिक लक्की जोहल ने मैट संधू मर्डर की जिम्मेदारी लेते हुए और दूसरे गैंगस्टरों के दावों को खारिज करते हुए पूरा बयान जारी किया। उन्होंने कहा, बाकी जो भी लोग इस घटना की जिम्मेदारी लेने के दावे कर रहे हैं हम उन्हें चुनौती देते हैं कि वे सामने आए। हम उनसे किसी भी जगह ग्राउंड लेवल पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इन सब के बाद पंजाब पुलिस ने कहा है कि उन्हें कुछ अहम सुराग मिले हैं और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अब जब चौतरफा बयानबाजी हो रही है तो राजनीति भी होनी ही है। इसी कड़ी में पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोला। कहा, आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में आम आदमी की जान की रक्षा करने में पूरी तरह से फेल है। पूरे राज्य में डर का माहौल है। दूसरी तरफ भगवंत मान की सरकार रंगला पंजाब और ईमानदार सरकार के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रही है। ये हैरानी की बात है कि इतने बड़े मर्डर पर ना तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा और ना ही भगवंत मान ने एक शब्द बोला। फिलहाल तो संधू की मौत का मामला गंभीर होता चला जा रहा है। जिम्मेदारियां भी लोग लेने ही लगे हैं, लेकिन सवाल तो है कि क्या कंटेंट बनाने पर आपको गोली मार दी जाएगी। इस पूरे वाक्य को सुनकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।
1: ये सी एक रिपोर्ट जड़ी अमृतसर तो आइए थोड़ी जी गलबात जड़ी है कुछ एक जान सकते हैं क्योंकि LGBTQ दे जड़े लोकी हुंदे ने इत्थे प्राइड परेड जड़ियां ने वो हुण पिछले कुछ लंबे समय तो लोकी कोशिश करदे आ रहे ने कि वी इहनां दे नाल जस्टिस हो सके, बट जिवें जिवें थोड़ी जी अपने वल्लों कोशिश करदे वी आम लोकां दे विच जागरूकता लैके आईए ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ

गार्डनिंग, हाइकिंग और एज अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ रिटायरमेंट के बाद कई लोगों का डेली मूवमेंट अचानक कम हो जाता है। सुबह थोड़ी वॉक, फिर कुर्सी, सोफा, टीवी और घर वालों का प्यार आप कुछ मत कीजिए। और कुछ साल बाद वही परिवार कहता है कि पता नहीं शरीर इतना कमजोर कैसे हो गया। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अपने पेरेंट्स को आजादी से रहने देना लापरवाही नहीं है। सेफ लिमिट्स के अंदर उन्हें चलने, सामान उठाने, सीढ़ियां चढ़ने और अपने काम को खुद करने देना उनकी ताकत बचाने का तरीका हो सकता है। सम्मान का मतलब उन्हें सिर्फ कुर्सी पर बैठा देना नहीं है, असली सम्मान है उन्हें ज्यादा समय तक अपने पैरों पर खड़ा रहने लायक बनाना। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर मूवमेंट इतना जरूरी है तो हमारे यहाँ सुबह वॉक करने वाले लाखों लोग भी कमजोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भाई वॉकिंग और स्ट्रेंथ एक ही चीज नहीं है। वॉकिंग बहुत अच्छी हैबिट है, यह हार्ट हेल्थ, मूड, स्टेमिना और ब्लड सर्कुलेशन के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन सिर्फ सामान्य वॉकिंग से मसल्स को हमेशा इतना रेजिस्टेंस नहीं मिलता कि उनकी स्ट्रेंथ बची रहे। मसल को एक मैसेज चाहिए कि हमारी जरूरत अभी खत्म नहीं हुई है, और ये मैसेज रेजिस्टेंस से मिलता है, कुछ उठाने से, कुछ धकेलने से, अपना बॉडी वेट कंट्रोल करने से। इसका मतलब ये नहीं है कि 65 साल के माता पिता को पहले दिन जिम ले जाकर भारी डेडलिफ्ट करवा दीजिए। शुरुआत बहुत बेसिक हो सकती है, एक स्टेबल चेयर पर धीरे धीरे बैठना और बिना हाथ लगाए उठना, दीवार के सहारे पुशअप्स, हल्का रेजिस्टेंस बैंड इस्तेमाल करना, पानी की छोटी बॉटल से कंट्रोल्ड एक्सरसाइज कर सकते हो, किसी सपोर्ट के पास खड़े होकर बैलेंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये सब हफ्ते में 2 या 3 बार अपनी क्षमता के हिसाब से। अगर पहले से हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, रिसेंट सर्जरी या कोई गंभीर बीमारी है तो शुरुआत डॉक्टर या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से ही होनी चाहिए। लेकिन मिस्टेक ये है कि चोट के डर से मूवमेंट ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, ये हड्डियों पर सेफ स्ट्रेस डाल सकती है, बैलेंस सुधार सकती है और गिरने के रिस्क को कम करने में मदद कर सकती है। और गिरना बुजुर्गों के लिए छोटी घटना नहीं होती, ये जानलेवा घटना होती है। लासी के मुताबिक करीब 11.5 इंडियन बुजुर्गों ने हाल के वर्षों में गिरने की घटना रिपोर्ट की, जिसमें महिलाएं ज्यादा थी। कई बार एक फॉल उस चेन की शुरुआत बनता है कि चोट लगी, चलना कम हुआ, मसल्स और घटी, बैलेंस और खराब हुआ और फिर दूसरी बार गिरने का डर पैदा हो गया। इसलिए गोल सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं है, गोल है गिरने के बाद सहारा ढूंढने की जगह गिरने की संभावना ही कम करना। लेकिन एक्सरसाइज पूरी कहानी नहीं है, अगर शरीर को बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो वो मसल बनाएगा किससे? इंसान अपने पीक मसल और बोन मास का बड़ा हिस्सा लगभग 25 से 30 साल की उम्र तक बनाता है, उसके बाद जिंदगी भर हम उसी जमा पूंजी से खर्च करते रहते हैं। और हमारे यहाँ 25 से 30 साल की उम्र कैसे गुजरती है? स्कूल और कॉलेज में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, फिर एग्जाम, नौकरी, शादी, स्ट्रेस और पूरा दिन कुर्सी पर। एक बड़ी इंडियन स्टडी के अनुसार 30 से 55 साल के करीब 71% इंडियंस की मसल हेल्थ खराब पाई गई। सोचिए, हमारे रिटायरमेंट की सेविंग्स शुरू होने से पहले ही हम फिजिकल बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ 60 साल के लोगों के लिए नहीं है। अगर आप 25 के हो, 30 के हो या 40 के हो तो आप इस समय अपना बुढ़ापा बना रहे हो। लेकिन अब बात उस मिथ की है जिस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व है कि हमारा भारतीय खाना दुनिया में सबसे हेल्दी है। हम कहते हैं कि हम दूध पीते हैं, दही खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं जनाब, घी खाते हैं, विदेशों तो पैकेट का खाना खाते हैं। इसमें आधा सच है। दूध और दही प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12 के यूजफुल सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन घी में प्रोटीन और कैल्शियम ना के बराबर होता है। घी मुख्य रूप से फैट और एनर्जी का सोर्स है। घी अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन उससे मसल्स और हड्डियां अपने आप मजबूत नहीं हो जाती। और असली ट्विस्ट यहां है, जिस ट्रेडिशनल डाइट पर हमें गर्व है वो असल में एक अलग लाइफस्टाइल के लिए बनी थी। लोग खेत में काम करते थे, मीलों चलते थे, बोझ उठाते थे, हाथ से मेहनत करते थे, तब कैलोरी डेंस खाना उस मेहनत का फ्यूल था। आज वही थाली है लेकिन खेत की जगह ऑफिस चेयर है, पैदल चलने की जगह बाइक है, हाथ के काम की जगह स्क्रीन है। हमने परंपरा का खाने वाला हिस्सा तो बचा लिया लेकिन मेहनत वाला हिस्सा छोड़ दिया। और जब फ्यूल उतना ही रहे लेकिन इंजन चलना कम कर दे तो एक्स्ट्रा फ्यूल ताकत नहीं बनता, वो शरीर में फैट बनकर जमा हो सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि दादी का बनाया हुआ खाना अच्छा था या बुरा था, सवाल ये है कि हमारी आज की लाइफस्टाइल उस खाने के लायक मूवमेंट करती है। और इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम जुड़ती है, प्रोटीन। अवेलेबल डेटा के अनुसार इंडिया में एवरेज प्रोटीन इंटेक करीब 47 ग्राम पर डे है, जबकि ग्लोबल एवरेज करीब 68 ग्राम बताया गया है। उम्र बढ़ने पर शरीर मसल्स बनाने में पहले जितना एफिशिएंट नहीं रहता, इसीलिए बुजुर्गों को सिर्फ कम खाना नहीं, सही मात्रा में न्यूट्रिशियस और प्रोटीन रिच खाना खाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा धूप वाले देशों में से है, कि फिर भी अलग अलग स्टडीज में 70-90% लोगों तक में विटामिन डी की कमी रिपोर्ट की गई। कैसे? क्योंकि धूप मौजूद होना और शरीर को पर्याप्त धूप मिलना अलग अलग बातें हैं। हम ऑफिस में हैं, घर में हैं, गाड़ी में हैं, बाहर निकलते भी हैं तो पूरा शरीर कवर्ड रहता है। यह समय ऐसा होता है कि जब इफेक्टिव सनलाइट एक्सपोजर कम मिलता है। विटामिन डी कैल्शियम अब्सॉर्प्शन और बोन हेल्थ में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। आप दूध और दही लेते रहो लेकिन अगर विटामिन डी बहुत कम है तो भाई बोन हेल्थ प्रभावित हो सकती है। 50 साल के बाद, खासकर मेनोपॉज के बाद, महिलाओं में बोन

0: मेनोपॉज तेजी से बढ़ सकता है। एक इंडियन स्टडी में ऑस्टियोपोरोसिस 30 से 39 साल की महिलाओं में करीब 3% पाया गया, 50 और 59 साल की उम्र में ये 14.3, 60 से 69 में 18.6 और 70 साल के बाद 36.4% तक पहुंच गया। और एक दूसरी बड़ी एनालिसिस के मुताबिक करीब हर दूसरे एडल्ट में ऑस्टियोपेनिया और हर 5 में से एक में ऑस्टियोपोरोसिस पाया गया। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस अक्सर दर्द देकर वार्निंग नहीं देता, कई बार उसकी पहली अनाउंसमेंट फ्रैक्चर के रूप में होती है। इसीलिए 50 के बाद बोन हेल्थ, विटामिन डी और जरूरत के अनुसार बोन डेंसिटी टेस्टिंग पर डॉक्टर से बात करना कमजोरी का इंतजार करने से बेहतर है। लेकिन अब सबसे
1: जी सो थोड़ी जी गलबात हाले हो रहे बची है जी सुना गे अपा, बट एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक लेने पहले फिर बाद चो गल करते हैं।
2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
3: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
4: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
3: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
4: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
3: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
4: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
3: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
4: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat het immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde han. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
7: Regulated Canadian Immigration Consultant.
6: 403-225-1111.
5: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way. Only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
8: The time is 3 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: 50 के बाद बोन हेल्थ, विटामिन डी और जरूरत के अनुसार बोन डेंसिटी टेस्टिंग पर डॉक्टर से बात करना कमजोरी का इंतजार करने से बेहतर है। लेकिन अब सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सक्यूज बचता है जीन्स। देखो, अगर सिर्फ जीन्स का मामला होता तो जापान और साउथ कोरिया जैसी एशियन कंट्रीज हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सबसे ऊपर कैसे होते। सिंगापुर जैसे देश में रहने वाले इंडियन ओरिजिन लोगों का एनवायरनमेंट बदलने के बाद हेल्थ भी कैसे इम्प्रूव हो गई। और आज यूरोप में जो 70 साल के लोग एक्टिव दिखते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा वैसे नहीं थे। पिछले दशकों में वहाँ पब्लिक हेल्थ, वॉकेबल स्पेस, पार्क्स, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन और एल्डरली फिटनेस प्रोग्राम में बदलाव आया। मतलब जीन्स कहानी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखते। एनवायरनमेंट और हैबिट भी पेजेस बदलते हैं। लेकिन यहाँ फॉरेन रील्स को देखकर एक और गलती मत कीजिए। हर 70 साल का अमेरिकन मैराथन नहीं दौड़ रहा है, वो रील में इसीलिए है क्योंकि वो अलग है। अमेरिका के हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 69.9 साल बताई गई है, जो कई रिच कंट्रीज से कम है। वहाँ भी ओबेसिटी, इनएक्टिविटी और क्रोनिक डिसीजेस बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए फॉरेन मतलब फिट और इंडियन मतलब वीक दोनों ओवर सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन उन रील्स के बढ़ा चढ़ा के बताने के पीछे हम सब अपने डेटा का इग्नोर नहीं कर सकते। 30% फ्रेलिटी का आंकड़ा असली है, कम ग्रिप स्ट्रेंथ का आंकड़ा असली है, बोन वीकनेस और फॉल्स का रिस्क भी असली है। तो सवाल है कि क्या डैमेज रिवर्स हो सकता है। और यहाँ सबसे अच्छी खबर है, मसल एक ऐसा टिश्यू है जो उम्र बढ़ने के बाद भी ट्रेनिंग का जवाब दे सकता है। रिसर्च में 80 और 90 साल की उम्र के लोगों में भी सुपरवाइज्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ और फिजिकल फंक्शन में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। जो फिजिकल कैपिटल हमने 25 साल में नहीं बनाया, उसका कुछ हिस्सा 60 में भी वापस बनाया जा सकता है। परफेक्ट बॉडी नहीं चाहिए, बस आज से बेहतर कैपेसिटी चाहिए। इसीलिए अपने घर में एक छोटा सा रूल बनाओ। पहला, रोज मूवमेंट। दूसरा, हफ्ते में 2 या 3 दिन एज अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ वर्क। तीसरा, हर मील में कोई प्रैक्टिकल प्रोटीन सोर्स, दाल, चना, राजमा, दही, दूध, पनीर, अंडा या मेडिकल नीड्स के अनुसार दूसरा सूटेबल सोर्स। चौथा, बुजुर्गों के सारे काम छीनना बंद कीजिए, उन्हें सेफ एनवायरनमेंट दीजिए, परमानेंट बेड रेस्ट नहीं दीजिए। पांचवा, एक सिंपल प्रोग्रेस टेस्ट रखो। क्या वो बिना हाथ लगाए चेयर से उठ सकते हैं? क्या वो शॉपिंग बैग की हल्की चीजें उठा सकते हैं? क्या वो सहारे के पास खड़े होकर 10 सेकंड बैलेंस बना सकते हैं? क्या उनकी वॉकिंग स्पीड पिछले 6 महीने में नोटिसेबली कम हुई है? ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंस का ऑडिट है। और अगर इसमें अचानक डिक्लाइन दिखाई दे तो उसे नॉर्मल एजिंग कहकर छोड़ने की जगह मेडिकल इवेल्युएशन कराइए, जांच कराइए। क्योंकि कई बार कमजोरी के पीछे एनेमिया, विटामिन डिफिशियंसी, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स या दूसरी ट्रीटेबल प्रॉब्लम भी हो सकती है। 70 साल की उम्र में कोई इंसान दौड़ पाएगा या सिर्फ खड़ा होने के लिए सहारा ढूंढेगा, इसका फैसला उसके 70वें बर्थडे पर नहीं होता। वो फैसला उस दिन होता है जब उसने चलने या बैठे रहने में से एक को चुना था, मसल को इस्तेमाल करना या सरेंडर करने में से एक चुना था, और परिवार ने उससे कहा कि आप खुद कीजिए, हम पास हैं, या फिर आप कुछ मत कीजिए, अब आपकी उम्र हो गई है। देखो, बुढ़ापा कैलेंडर से आता है, लेकिन कमजोरी की स्पीड हमारी आदतें तय करती है। क्योंकि लंबी जिंदगी का असली मतलब ज्यादा सांसें नहीं, ज्यादा साल अपने पैरों पर खड़े रहना है।
1: तो ये सीवी जी, क्योंकि सेहत के बारे अक्सर आप गलबात करते रहने हैं, सो जरूर गल जी अडोप्ट करना चाहिए जिंदगी दे विच। वैसे इत्थे जिहड़े साडे बजुर्ग रहिंदे ने, जे उही इंडिया च रहिंदे ते ओ जल्दी बजुर्ग हो जांदे ने, कह लो वी बुढ़े हो जांदे ने, ते लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिहड़ी घट जांदी। बट इत्थे रहिण दे नाल की हुंदा, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਟਿਵਲੀ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਂਡਲੈਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੋਨਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 45-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣੀ। ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-3400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा, लिसनिंग टू कैलगरीज़ मोस्ट पॉपुलर रेडियो, रेडियो
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated.

0: कितना है और क्या क्या रास्ते आपके पास में पॉसिबल है कि प्रीनेटल टेस्ट है, आईवीएफ के साथ एम्ब्रियो टेस्टिंग है और बहुत सी कंडीशंस में अगर जन्म से पहले पता हो तो इलाज बहुत बेहतर हो जाता है। फैसला आपका है लेकिन फैसला जानकारी के साथ होना चाहिए, अंधेरे में नहीं होना चाहिए। और चौथा, अपने डॉक्टर को अपना समुदाय या कास्ट बताइए, खासकर ऑपरेशन से पहले, क्योंकि जैसे वैश्य समाज समुदाय वाले उदाहरण में देखा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो तब पता चलती है जब कोई पूछे। तो चलिए वापस उस शादी के घर में चलते हैं, वहां कुंडली मिल रही है, 36 गुण मिल रहे हैं, गोत्र देखा जा रहा है, खानदान देखा जा रहा है और हमारे पुरखों ने यह नियम बनाए भी इसलिए थे कि नजदीकी रिश्तेदारों में शादी ना हो, यानी उनकी नियत बिल्कुल सही थी, उनके पास बस वो चीज नहीं थी जो आज हमारे पास में है और वो है एक ब्लड टेस्ट। और इस वीडियो का मकसद किसी जाति को डराना नहीं है, किसी समुदाय पर उंगली उठाना नहीं है, मकसद सिर्फ एक गलतफहमी दूर करना है और वो गलतफहमी ये है कि हम सोचते हैं शादी में सबसे बड़ी जांच कुंडली है, जबकि सबसे बड़ी जांच वो है जो दो लोगों के खून में छुपी हुई है और जिसे आज के दौर में सिर्फ एक टेस्ट से देखा जा सकता है। हम 36 गुण तो मिलाते हैं और दो जीन मिलाने में हमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है, हमें थोड़ा डर लगता है। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी स्टडी IQIS।
1: जी सो ए मंगल सिंह दी रिपोर्ट सी जिहदे च उन्होंने दस्सिया कि भी किस तरीके दे नाल लोकां दे इंटरनल जिहड़े म्यूटेशन जिहड़ी हुंदी है किसी जीन की वो विच आ जाती है, तो अल्टीमेटली अगे जा के फिर नुकसान दे विच टर्न हो जाती है। सो इस करके जिहड़ी सोशल मीडिया उत्ते वीडियो वायरल हो रही है भी अपनी जाति दे विच विआह ना करो, क्योंकि अल्टीमेटली की हुंदा भी दोनों पेरेंट्स जिहड़े ने वो फिर सेम काइंड ऑफ म्यूटेशन जिहड़ी है जां जिहड़ा एक बैड इफेक्ट जिहड़ा कह सकदे तुसीं वो कैरी करदे आ, ते जदों दोनों पास्यों मदर ते फादर वाले पास्यों दोनों ही वो जिहड़े चीज़ां आ जांदियां ते अल्टीमेटली बच्चे दे उत्ते जिहड़ा वो काफ़ी वड्डा, क्योंकि पेरेंट्स उस टाइम दे उत्ते सिर्फ कैरियर दा काम ही करदे हुंदे ने, वो अपने आप दे विच ते फिट ने, उन्हां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, बट बच्चा जिहड़ा उन्हां दा वो अनफिट हो जांदा। कई वारी आपां अक्सर देखिया भी बच्चे जिहड़े ने वो बहुत बीमार देखे जांदे ने, उहदे च स्पैशली जदों कई वारी ये देखते हैं आप भी 3-4 बच्चे ने, 5 बच्चे ने एक फैमिली के, तो उन्होंने एक अद्धा बच्चा जिहड़ा है वह किसी ना किसी स्पैशल बीमारी के नाल ग्रस्त हुंदा, तो उत्थे बड़ी प्रॉब्लम आती, क्योंकि ये स्टडी उहदे ते काफ़ी एप्लीकेबल है, उहदे ते देख सकते हैं क्योंकि वह सेम ही ट्री दे विचों आते हैं वो लोग जिहड़े, तो अल्टीमेटली जो सेम ट्री दे विचों आने वाले आ तो उहदे नाल की हुंदा भी जदों किते ना किते वह सालां बद्धी जिहड़ा है वह काम चलिया आंदा सीगा ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰਵਾਲ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਲ ਸੀਗੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਸੀਗੇ, ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਬਟ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੁੰਡਾ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੋਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 1 ਕੁੜੀ, ਤੋ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਰੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ

0: अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे 7 टू 8 पीएम संडे 1 टू 5 पीएम
1: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat hai immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
2: Regulated Canadian Immigration Consultant.
1: 403-225-1111.
0: From the heart of Calgary to every corner within a 250-kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way. Only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
3: हम जर्मनी के कुलोन स्पोर्ट्स मेडिकल कॉलेज में हैं। मांसपेशियां यहां भी एक बड़ा टॉपिक है और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए लेकिन क्यों यही जानने के लिए हम एलिजाबेथ और नदीन के साथ एक एक्सपेरिमेंट में शरीक होते हैं दोनों दफ्तर में घंटों बैठकर काम करती हैं ऐसे में उनके शरीर में शक्ति यानी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी खेल विज्ञानी बोरिस द्रागुतिनोविच यही जानना चाहते हैं
4: रॉड को पकड़िए आप जैसे चाहें खुद को पोजीशन कर सकती हैं जैसे ही मैं कहूं उसे जितनी तेजी से हो सके उठाइए यानी घुटने मोड़ते हुए झुकिए और जितनी तेजी से हो सके ऊपर आइए लेकिन पहले कुछ स्क्वाट के साथ वार्म अप कीजिए
3: फिलहाल इन दोनों ने मांसपेशियों की कोई खास ट्रेनिंग नहीं की है
5: मैं अभी कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ मैं स्टैमिना वाले दूसरे स्पोर्ट्स करती हूँ मैं कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नहीं रही लेकिन अब मैं ये शुरू करना चाहती हूँ
3: नदीन भी इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं
6: पिछले नवंबर में मेरा घुटने का लिगामेंट टूटा इसीलिए अब मुझे बाकी मांसपेशियां मजबूत करनी होंगी
7: रेस्ट देयर मस्कुलन aufbauen und stärken
3: एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में ही बोरी से मापना चाहते हैं कि ये दोनों महिलाएं कितनी ताकतवर हैं वो एक लोड वेलोसिटी प्रोफाइल तैयार करते हैं इसका मतलब है दोनों प्रतिभागी कितनी तेजी से 20 किलो का भार उठा सकती हैं दो हफ्ते बाद इसे फिर नापा जाएगा तब तक उन्हें हर दिन कुछ मिनटों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी
4: जिन लोगों में ज्यादा ताकत नहीं होती या जिन्हें ट्रेनिंग का अनुभव नहीं होता उनमें भी दो हफ्तों के भीतर ही न्यूरल अडेप्टेशन दिखने लगता है इसका मतलब है उनकी मांसपेशियों का नियंत्रण बढ़ने लगता है
3: न्यूरल अडेप्टेशन यानी जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हम बहुत जल्द ही मजबूत बनने लगते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मांसपेशियां तुरंत बड़ी या मजबूत होने लगती हैं असल में होता यह है कि दिमाग और तंत्रिकाएं मांसपेशियों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सीख जाते हैं साथ ही मसल फाइबर बड़ी संख्या में सक्रिय होने लगते हैं नर्व सिस्टम मजबूत और ज्यादा नियमित हो जाता है इससे मसल फाइबर्स ज्यादा तेजी और ताकत से संकुचित होने लगते हैं इससे तालमेल बेहतर होता है मांसपेशियां आपस में ज्यादा कुशलता से काम करने लगती हैं नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से दिमाग मांसपेशियों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करना सीखने लगता है रोजमर्रा के जीवन में मांसपेशी का तेजी से सक्रिय होना उसकी ताकत से ज्यादा अहम है प्रोफेसर विलियम ब्लॉक कोलोन में इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रमुख हैं
8: कल्पना कीजिए कि आप गड्ढों से भरे रास्ते पर चल रहे हैं और आपका पैर एक गड्ढे में घुस जाता है उस समय तो मुझे तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली मांसपेशी की जरूरत है ताकि मैं गिरने से पहले ही संभल सकूं।

0: तेजी से रिएक्ट करना ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत अहम है, इसीलिए अभ्यास तेज प्रक्रिया पर फोकस करते हैं।
1: आइडिया ये है कि आप इसे आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें। आपको उसी तरह की एक्सरसाइज चुननी चाहिए। रफ्तार के साथ गतिशील रहने की क्वालिटी पर ध्यान लगाइए। एक कुर्सी के सामने खड़े हो जाइए, फिर धीमे से झुकिए और फिर जितनी तेजी से हो सके खड़े हो जाइए। अगली एक्सरसाइज है आगे की ओर कूदना। अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो आप हर बार पैर बदल भी सकते हैं।
0: ये अभ्यास तो एक बड़े एक्सरसाइज पैकेट का छोटा सा हिस्सा है। इन्हें दैनिक दिनचर्या में जोड़ा जा सकता है।
1: अब तो मेरी भी सांस चढ़ रही है। बिना दबाव इसे ट्राई कीजिए।
0: आज से नदीन और एलिजाबेथ रोज दिन में 3 बार 5 मिनट के लिए ये एक्सरसाइजेस करेंगी।
2: मस्कुलर सिस्टम एक बड़ा अंग है। हमारे शरीर में करीब 40-50% मांसपेशी भार होता है। शरीर में सबसे ज्यादा भार यही है, इसे एक्टिविटी और दूसरे सिस्टम से मिलने वाली ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे दिल या मस्तिष्क को। हमारी मांसपेशियों का हमारे शरीर पर बहुत ही ज्यादा असर होता है और ये बाकी शरीर को भी ट्रेन करती है।
0: मांसपेशियां सिर्फ गतिशील रहने के लिए ही जरूरी नहीं होती, इनका संबंध हमारे पूरे स्वास्थ्य से भी है। नियमित मसल ट्रेनिंग से हड्डियां और जोड़ भी दुरुस्त रहते हैं, साथ ही डायबिटीज और हृदय रोगों का जोखिम भी घटता है। मसल्स बनाना दिमाग को भी लंबे समय तक दुरुस्त बनाए रख सकता है। फायदे कई हैं और नदीन और एलिजाबेथ उत्साहित हैं। दोनों जानती हैं कि ये भविष्य की सेहत के लिए एक अच्छा निवेश है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हमारी मांसपेशियां ताकत खोने लगती हैं। 30 से 40 के बीच तो इस गिरावट को साफ दर्ज भी किया जा सकता है। 60 के आसपास मांसपेशियां घटने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है और हम हर साल 2-3% मसल स्ट्रेंथ खोने लगते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इस प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। वापस लौटते हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में।
1: बीते 2 हफ्ते कैसे रहे?
3: बहुत बढ़िया। रोजमर्रा के रूटीन में उन्हें शामिल करना आसान था, वीकेंड में थोड़ा मुश्किल हुआ।
4: करने लायक था।
0: क्या 2 हफ्ते तक हर दिन करीब 5 मिनट की गई ट्रेनिंग बड़ा फर्क डालेगी?
1: ये 2 पीली लाइनें नदीन की हैं, नीली एलिजाबेथ की। डॉटेड लाइन आखिरी बार दर्ज नतीजे बताती है और बिना टूटी लाइन इस वक्त के यानी एक्सपेरिमेंट के अंत के रिजल्ट बताती है। रफ्तार पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। आप हल्के वजन को बहुत तेजी से मूव कर पा रही हैं। ये ट्रेनिंग का असर है।
0: नदीन और एलिजाबेथ आगे भी ये ट्रेनिंग जारी रखना चाहती हैं।
5: ये जी ओंकार सिंह जनोटी की रिपोर्ट। वैसे सो तुसी सुन ली है कि भी फिटनेस जी बड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये वास्ते एक्सरसाइज जी बड़ी जरूरी है। जिस तरह दिया स्टेप्स दसे गए ने, जंप मारना ते स्ट्रेचिस करना, ये एक्सरसाइज तुहाडे शरीर वास्ते बहुत वधिया। लिफ्ट करना, सो ये सारा कुछ इहदे विच सीगा इन्हां ग्रुप्स दे विच। आई होप भी अज का प्रोग्राम सो फार तुहानू पसंद आ रहा होगा। सेहत नू वधिया करन वास्ते 4 बज चुके ने, स्टूडियो दे घड़ियां दे अक्तूबर दी 4 तरीक भी है, ते हले 1 घंटे दा प्रोग्राम होर पिया जिहदे च आपां होर कुछ गल्लां बातां जिहड़ियां ने लोकल पोलिटिकल जां इनिशिएटिव जिहड़ियां नूं ते नज़र मारदे। एक छोटी जी ब्रेक तों बाद सबरंग रेडियो 94.7 FM ते जी।
6: The time is 4 PM. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
1: The following program speaks to the East Indian community uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio the multicultural spirit of Calgary CHKF 94.7 FM
2: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬਟ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ
3: ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਓਂ ਕੇ ਊਰਜਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੋ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਮਦਦ ਸੇ ਸਰੀਰ ਜੀਨਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਖੂਨ ਬਨਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਵਿਭਾਜਨ ਮੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲਤੀ ਹੈ B12 ਤੰਤ੍ਰਿਕਾ ਕੋਸ਼ਿਕਾਓਂ ਕੇ ਬਨਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਵ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸੇ ਬਨਨੇ ਮੇਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਤਾ ਹੈ B12 ਕੀ ਕਮੀ ਸੇ ਤੰਤ੍ਰਿਕਾਏਂ ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਂ ਪੜਤੀ ਹੈ पहले सुरक्षात्मक कवर और फिर धीरे धीरे अंदरूनी हिस्से आखिर में तंत्रिकाओं के पूरे रास्ते को ही नुकसान होने लगता है
4: सबसे क्लासिकल लक्षण है संवेदना की गड़बड़ी जैसे हाथ या पैरों में चींटी रेंगने सा एहसास उनका सुन्न सा होना और एकाग्रता प्रदर्शन दिमागी परेशानी थकान और यहाँ तक कि चलने में अस्थिरता भी
3: रेनाटे प्राल भी उन लोगों में हैं जो विटामिन B12 की कमी का खतरा झेल रही हैं। पहली वजह है उनकी उम्र वो 60 के पार है दूसरा वो मीट नहीं खाती हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक इससे B12 की कमी का खतरा और बढ़ जाता है शरीर खुद विटामिन B12 नहीं बना सकता है ज्यादातर लोग मछली अंडे डेयरी प्रोडक्ट और मीट से ये जरूरत पूरी करते हैं
5: बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि पाचन तंत्र के जरिए उनका शरीर कम B12 सोख पाता है और कभी कभार कम पोषण यानी वो पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खाते हैं
3: हेयर ड्रेसर जेनिफर हाइंस भी B12 की कमी का शिकार हैं, लेकिन वो मीट खाती हैं और उनकी उम्र महज 41 साल है जेनिफर अक्सर अपने हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस करती हैं इस दौरान वो नर्वस भी होती हैं
6: मेरे हाथ पैर अक्सर सो जाते हैं कभी कभार सुबह अजीब सा एहसास भी होता है मैं खोई खोई रहती हूँ और खुद को समझने की बहुत कोशिश करनी पड़ती है मैं अक्सर चीजें भूल जाती हूँ थकी थकी रहती हूँ हालांकि ऐसी थकान मुझे नहीं होती थी
3: डॉक्टर ने जेनिफर की जांच की और पता चला कि उनके शरीर में विटामिन B12 की भारी कमी है ऑटो इम्यून रिएक्शन इसकी वजह हो सकता है डॉक्टर क्नॉप जांच रहे हैं कि क्या इस कमी ने तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाया है सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ MRI भी बता रहा है कि उनकी रीड सही सलामत है इन चीजों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए उन्हें अपना B12 स्तर लगातार मॉनिटर करना होगा इलाज सीधा साधा है विटामिन B12 की गोलियां या इंजेक्शन जेनिफर को हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगेगा खास मेटाबॉलिज्म के चलते उनके शरीर को बहुत ज्यादा B12 चाहिए इलाज का तेज असर हुआ है
6: मैं फिट और दिमागी रूप से स्पष्ट महसूस कर रही हूँ कोई झंझनाहट नहीं है ये शानदार है
7: फिजियोथेरेपिस्ट क्रिस्टियन राउशर मानते हैं कि मांसपेशियों में कई तरह के दर्द और तनाव की एक साझा वजह होती है
8: हमारे शरीर चलते फिरते रहने के लिए बने हैं लगातार बैठे रहने या स्थिर रहने से
9: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें